राम मनता राम जी होई जे, राम मनता राम जी होई जे, पदी बैसो नि पदवी घीजे। ऐसे सुख वचने आहे, विश्वासे अनुभव पाहे।

0: हाय एवरीवन, दिस इज मोहित लालवानी। उम्मीद करता हूँ कि
1: नमस्कार, मी स्वप्निल जोशी, आपण ऐकत आहात अहमदनगर से लोकमातनगर नाश तुमचा।

उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो।